के भैया जहान मनाते हैं सो वेरी मच नेक्स्ट में से वही छे गरीबों की अच्छा गरीब की मोहब्बत हमेशा से अच्छा गरीब को कहाँ मोहब्बत मिलती है गरीब को मोहब्बत आज तक सही रखे भैया जहान मना थैंक यू सो वेरी मच रोजाना यो जहान मनाने कहूँ थैंक यू सो वेरी मच सो खोजा और इधर को बिल्कुल नेक्स्ट मैसेज मिलेगा वहाँ तो से प्रोग्राम के इंशाल्लाह शामिल हुआ जी प्रोग्राम के रोता काल का वाला शायद सिफर 332 छियानवे दस 329 नंबर मन बिल्कुल काल हाँ का वाला शायद मैसेज हाँ का वाला शायद प्रोग्राम हिसाब है गर्जवा नंबर यू सली ब्याज जीते सर नोट कहें सिफर 332 छियानवे दस 329 दादे सिफात बिल्कुल तक प्रोग्राम नंबर था और इन अलावा जी सिफात कॉस्मेटिक बारे में जी तो से सह मालूम कवल गोड़ है सिफात कॉस्मेटिक जी हेल्पलाइन नंबर हम मौजूद है तो से आगे मंदिर अभिता का वाला शायद सिफात कॉस्मेटिक पाकिस्तान हेल्पलाइन नंबर 313 97 65005

0: बिल्कुल एंजॉय द बीजीएम सा बिल्कुल बीजीएम रसा एंजॉय कवे सा गुरु नेस कलर चिम से काल लारी सोफियो सब शमेलवी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो काल मो मिला द जी का मो आवाज दिस जी खबर वके। हेलो जी जी जी जी खबर वके।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी। सुख तिस रकीम जना
1: सलाहुद्दीन
0: आ जाए सबरदीन नंदे सबरदीन आवाज कट के जी सा ना लश्की काट चलो बोनो मैं के काट चलो सर सी सरंगे सही है जिंदगी सादा
1: सबर बारी बिल्कुल बस खाई मन नस्ते बस तमने सबर।
0: अच्छा अच्छा बस ड्यूटी कहे गए ना जब थे मैंने सीखता है दस सा खबर है अच्छी
1: ड्यूटी मैं उसमें
0: ये जहान मन ना दा तो मीने दा गना छे राज बात तो
1: कतल में छे बिना होटल में सुरु पर्सनल खुद में कल वो मिला उसी
0: ने गोरे बस तो विश्योर है तो ते पता दा गना छे कल में छे ट्राई गए बे मिला विज सा। हां
1: जी
0: सही सब
1: सदा सही के ना
0: सब रोबार यो सबर दिन यो जहान मन ना थैंक यू सो वेरी मच आते सलाम कुर्बान
1: मजदूर हवा चली जी सरदीर ऊंचा लखला पर निचते बरो मोकी
0: अल्लाह पाक का खैर रहमत एक्चुअली बरुना है वो किसा। ओके जी सबरदीन यो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच जी। तो जी धावरोड में रोड दे पोसा है ड्यूटी करी के नालेज के बिल्कुल आवाज के शोर रोतला लो 0332 96 10 329 बैक टू बैक तिकाल सिलसिला जारी रहा है। गुरु नेक्स्ट कलर चिमसे काल ले रिसोक ते सब शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। जी तड़ी मासे साये जनातीशे जनातीशे साये लश की चके चके खबर है वका लश की चके चके खबर का वो दे तुम रे काम और सुई जब बिल्कुल सही अल्हम्दुलिल्लाह सही है कनवी नहीं तो से मखत है नो से खबर इची दिया का वो जस्ट डेरे खबर है का सा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मोते सो कला कला ये इची आलता के खुदम रे डेर जागे से उसको सर जागे से ना मोते जी बिल्कुल जे चकला स्टूडियो ना बाहर त शकना वो में बने जागे सा नौ के सिर्फ जगे दो भी तस्वीर तोड़ सी का तस्वीर अर्तला के ना इशारे में बखैर दबिया वो इशारों में तुन ना पया वाला हो चूंकि देखी तस्वीर नर से सिर्फ खबर ही हुई नो खबर खुब कहू का ना नहीं खुरा कह मिसरेंगे तो सा तो सही समसरूफियात थी जी पति तक असरा गरमा के माशाला माशाला दा मड़ाई ड्यूटी तो तबखा मिलाव दा सा अच्छा ठीक सलाह मड़ाई पर गर्मी हुआ ना वही सास कवा यू जहान मना थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा बिल्कुल दास जाके ना खुरा के जब तो तबियत का ना पर सिफात के संस्करी रोंदी का ना ډیر مزیدور پروډکټ دی کله روشي بیا به زده طبیعي کنه چې اوس دا روخلا او بیا چې کله هغه استعمال وا او مړی په خوا کنه بالکل هیڅ څه قسم دی نقصان به ګرمي نه در کوي سم جی جی
1: ها مشوم چې د نن څه څه په پروګرام

वेलकम बैक वाला एक दफा प्रोग्राम इच सत बिस्मिल्ला सौ बिस्मिल्ला प्रोग्राम सराय की खुशबू दी अज इन खबर है संदर है ते कालां दा सिलसिला ही शुरू है लेकिन काल देख दिया है लेकिन केरा मेरा सोना मीठा बिरा काल करें दा पिया अफसोस काल कट गई है लेकिन बी केरा बिरा लेकिन काल करी सी दोस्तों आज फरमैशी प्रोग्राम है खबर है संदर है तुसा री फरमैश आओ जी काल जाने है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और रबी लाल अमीन दे आरा यू असमा का वालेकुम असलाम अजब खान को नहीं माँ जिगरा सरदार मीरा अजब खान तो मुझ सलूट कहू सलाम उना कहू दुआ गाने कहू चरंगा मीरा अजब खान अशय बराबर है अल्लाह दे कदर मन के बाद तासो खिदमत से राग लो तासो खिदमत ब पूरा कहू अवल फरमाइश रहो शवा नाजिया इकबाल मुझ मोहब्बत करे दे बिल्कुल दा कोशिश कहू आमिरा जफाना चरंगा तासो दे कली मौसम चरंगा दा लक गर्मी चो कमीरा ला जार दे सा वाह वाह वाह अजब खाना वाह जी बिल्कुल अच्छा तो सलामून वर कहे जी डेरा मनाना।

डेरा मनाना डेरा मनाना। आओ जी नाजिया इकबाल दी आवाज इच मीरा जब खान लूणी दी चू जबरदस्त साडा कालर है, बड़ा अच्छा कालर है। हर प्रोग्राम मीरा जब खान साडा प्रोग्राम सुनदा है। ए सरदारां दी नगरी चू है जी, सरदारां दी नगरियां अल्लाह ताला खुश खुरम रखे आबाद रखे। आओ सुनिए नाजिया इकबाल को।

जी एफ एम रेडियो 88.4 अमन रेडियो टांग दी आवाज और नशरियात ते प्रोग्राम है सराय की खुशबू दे विच खबरे संदरन दे विच है तू सडी फरमाइश काल आंदी पे देखन मीठा भिरा मेरा कौन है काल चानिया जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शय बराबर है जार दे सन ठीक ठाक है अखबर नाम खोरा था वो शवा शेख गरे ना अतौर रहमान आवाज सही रवान बिल्कुल जी अखबल फरमाइश खो रहा था वो शवा शहनशाह बादशाहवल बिल्कुल जी शहनशाह बादशाहवल टपे बलगू अखबल नाम दे रहा था वो शवा ब्याह माना खुलिश की वेर सला है अतौर रहमान ता सरा नूर मलगरिस था बस वाह जी वाह दो तो मारा तरफ ना नमतुल्ला आरई तरफ ना एफ एम रेडियो 88.4 तरफ ना शदवा गाने सलामुना बिल्कुल नोट चरंगा तासो दे कली मौसम चरंगा जार दिसा वाह जी वाह शुक्र दच गर्मी कमी राला बिल्कुल चाहता सलामुना वर कहे गोल उस्ताद सलाम वाह जी ओके ओके जी वसला फैजान था वसले चौक आर भी लगे दिता सलमुना वरे से दल अलाद खुशहाल का आबाद से जिंदाबाद जी रसूल बादशाह दे टपे दोस्तों स्पेशल फरमाइश आई आओ रसूल बादशाह दे टपे सुन गया।

FM रेडियो 88.4 अमन रेडियो टांग दी आवाज है ते प्रोग्राम है सराय की खुशबू दे नाल आयन तो साडे फरमाइशां ते काल आंदी पई देखण आ केरा खुश नसीब है ते केरे फरमाइश है आओ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शुक्र दत्तश है जार दसों कुर्बान दसों बराबर है ठीक ठाक है। आवाज कटके जी कलर आवाज मेरा जी अच्छा सही सोचो कोशिश करू अगर पर्क रखा था नटवर से अला बखैर के तो कुम जी ना खबर है कहे उमर अडे ना गिला मान अच्छा रंगा शे बराबर है तबियत दे शदा शुक्र अल्लाह करम चाटा पे रजनूर वजीर आ चाटा सलामू नवर कहे वालेकुम असलाम वालेकुम असलाम। जी दोस्तों रजा नूर दे टपे ते फरमाइश की थी जी रजा नूर देख देखते पे दोस्तों FM रेडियो 88.4 अमन रेडियो टांग दी आवाज और नशरियात है ते दोस्तों तुसे अपना काल दे जरिए आ सकदे वे अपनी फरमाइश प्रोग्राम में खबर है संदरे ते तुसा दी फरमाइश ते बिल्कुल सारे गाने जेरा फरमाइश करे सी उंदा गाना पूरा थी सी वक्त ही बहुत जल्दी नाल वेंदा पिया दोस्तों ते आओ रजा नूर दे टपे सुनने हैं।

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: हेलो नमतुल्ला रईस से बराबर
0: है। रब्द खुशहाल का रब्द खुशहाल का खपल खोज नाम हुमा जिगरा वशवा
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: शे प्रोग्राम चिरंगा लगे जी दाऊद खाना
1: जबरदस्त लगी मौसम प्रोग्राम
0: मीना मोहब्बत या तेजी चे इंतजार कुमशी चे डेर भी कना आ मीना डेर सख फंद गई चलो नन खुद मिलाओसला अरमान दे पुरसला दाऊद खाना चरंगा प्रोग्राम शदा लका इनको बंद पहेजो
1: इनको अंदर आज मुझ पोस्टो आयु
0: ना लक माच प्रोग्राम से कल कल इनको से खबर है लक तासो पहेजो जिंदा चफरमैश दे रवड़े था चफरमैश दे रवड़े था दाऊद खाना दाऊद खाना खपके अहमदी अहमद गुली वाला होश वाला के दा मखो नसु लगा वाला चबल चेरे दा से पश्तो वाला गाना रहता वो शवा चरंगा कली मौसम हो चरंगा दा
1: मौसम शुद्ध शुद्ध बरदास्त मौसम गर्मी बस तेरस हुआ
0: गर्मी से को कमी रहा सोका बस सही होगा ना
1: डेर खान के मौसम बराबर था
0: दाऊद खाना चाह यार दोस्त अच्छा मलगरो दुआ सलाम और कहे
1: खबर
0: चाहे खुजी मेहरबानी कदरमान से कदरमान से अलाद खुशहाल का जिंदाबाद वगमा दा गाना दाऊद गान ने फरमाइश की थी बिल्कुल एफएम रेडियो 88.4 अमन रेडियो टांग तू सभी आ सकते वे एक कॉल दे जरिए अपनी फरमाइश आन सकते वे ते बिल्कुल तुसारी फरमाइश की कोशिश करे सू पूरी करे सू वगमा गाना

0: जी एफ एम रेडियो 88.4 प्रोग्राम है खबर है संदरे यानी कि तुसा दी फरमाइश काल आंदी पई देखन देख दे केरा मैडम मीठा बिराया। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जी जी प्रोग्राम खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है तुसा सेट टीवी किवें लगदा पिया साडा सराय की प्रोग्राम जी।
1: बड़ा जबरदस्त खामोश लिसनर है।
0: और बिल्कुल जी खामोश लिस्टनर था तो मैं पहले जिक्र कर गया कि सारे खामोश लिस्टनर बहुत ज्यादा हैं ते सुन रहे हैं ते कॉल करने दे बनिस्बत सारे खामोश ज्यादा हैं। मिठी बहना कोई फरमाइश आंदी ने?
1: जी मेरी फरमाइश है कंदी कोचई ते अमीन अल फद्दी आवाज
0: ते वला एक दफा ना दसे चा गुलकारा दा
1: अमीन अल फद्द ते कंदी कोचई
0: अमीना अल फद्द
1: जी
0: ते बिया
1: कंदी कोचई
0: ठीक है ते प्रोग्राम विच किवे साडा आवाज साडा रेडियो दा आवाज सही आंदा पिया कित्थों कणा लेंदे पए वे
1: जबरदस्त
0: टा कि चलेंदे पए आवाज सही आंदा कालर दा ते साडा ते गाना दा आवाज सही आंदा पिया
1: माशाल्लाह कोई कमी कोनी सिर्फ जेरे ले तुसे कुर्बान जार करे ने मैं कुरवान आंदे
0: केरा जी
1: ये तुसे कुर्बान जार करे ने ना
0: लिस्टर नहीं हर एक इंसान को अच्छा इखलाक होना चाहिए अच्छा इखलाक अच्छी शाय अच्छे को ते जी को ते सलाम अलैकुम दा वालेकुम थी है ते जी को बिस्मिल्ला कहने अच्छा इखलाक आपे भी ते बच्चा कोई ते यार दोस्तों कोई अच्छे इखलाक दी तरबियत दे सो अल्लाह ताला को इखलाक बहुत पसंद है।
1: जी जी जी
0: वालेकुम असलाम वालेकुम असलाम ते यार साडे जी भेने इना फरमाइश कीती है बिल्कुल साडे प्रोग्राम को पसंद कीता ने साडा प्रोग्राम बिल्कुल देख मैं सो को पहले अर्थ कर गया प्रोग्राम दे स्टार्ट इच के सारे खामोश लिस्नर बहु हिन अल्लाह ताला इना को आबाद रखे अल्लाह ताला इना को खुशियां देवे हमेशा खुश होवे अपने घर च आबाद होवे कहंदे मुहताज नोवे जे हमेशा खुशहाली जिंदगी होने इना दा बदन चमन द होवे ते जिंदगी बहार आली होवे। आओ इंदी फरमाइश ते सुन दे मिठी बहना साडी फरमाइश कीती है ते बिरा बैठे ते इंदी फरमाइश पूरी न करे कुर्बान जी बिल्कुल इना दी फरमाइश आओ रल के सुनिए

0: जी अफसोस ए गाने दी लका लैंड ठीक नहीं, कंप्यूटर ठीक नहीं, मदर करें मंजिल लेकर ते इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इंदी फरमाइश पूरी करे सू का लांदी पई देखण केड़ा मेडा मीठा बिरा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सैकू अते दी सारी टीम को मेरे तरफ सलाम।
0: ओ वालेकुम सलाम मेडा सोना मीठा मेडा खोया मेडा हलवा मेरे मीठे मीठे से
1: कुर्बान दा गजार।
0: जी कितु कना लेने पेवे कौन है अपना नाम मीठा दसावने आ
1: अलीम नवाज गंड पूरा लेने से तहसील कुलाची जो।
0: ओए होए होए सरदारा दी नगरी मैं सलूट पेश करे ना सलाम पेश करे ना।
1: खुश रहो आबाद रहो
0: सरदार
1: मीठे मीठे गालियां करेंदे रहो ए साडे साथ दा रेडियो साडा आपरा रेडियो है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह गंडापुर सारी सरदार दा सरदारा दी नगरी को सलाम है जी। हाल ले केरा फरमाइश आंदी ने
1: फरमाइश हयात अगवान दा रिकॉर्ड है
0: हयात अगवान गाने दी बोल कोई आंदी ने
1: लपे लपे वीने को दफलब दर पवा
0: लपे लपे वीने
1: मजाराना लरे राना हस
0: हाँ ते गुलकार दा नाम आ एक दफा दस मेरा मीठा
1: हयात अगवान
0: ठीक है कुलाच
1: मैनेजर साहब को आखो ताको
0: बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल
1: इरफान मरवत साहब को आखो
0: इको प्रोड्यूसर साहब जी
1: प्रोड्यूसर मेरे नाला से फान बैठे थे कयूम नवाज है ते मामा जान है उनको स्पेशल सलाम
0: जनाब
1: गुलकू ते यूसुफ साहब पूरे
0: जी पूरी जी जी ते वालेकुम असलम सारा सलाम पहुंच गए तुसन नाल कोई बैठा जी के कले गाल करे ने पेवे
1: जी
0: इकले बैठे हुए कि कौन नाले बैठे ने मैडम मीठा
1: नहीं मेरे नाल दो बंदे बैठे भिरा भी है ठीक संग किया उन ना
0: सकतुला हला हला हला मैडम मीठा हला ए भिरा को ते तेरे संग दी को ते मेरी तरफ ने मतुला आ रही ते एफएम रेडियो 88.4 दे तरफ बहुत सारा सलाम ते बहुत सारे दुआया
1: खुश हो मैं ते कतरो तो सुने सब रेडियो लगी पई ने कतरा आवाज से घाटा ने से मोबाइल को बहुत चल की पे ने मैं ते कतरो अब तो दिया ने तो मोबाइल तो सुन के तनु वाले
0: ओके वालेकुम अस्सलाम बहुत खैर होने ओके जी ए है फरमाइश है ते आओ इंदी फरमाइश पूरी करेने आओ रल के सुनने हैं।

0: टोटके नुस्खे या टैबलेट्स वगैरह उससे कंट्रोल तो कर लेते हैं लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं ढूंढते। ब्लड प्रेशर ये एक किस्म की खामोश बीमारी है और इसका पता भी नहीं चलता और ये नुकसान भी काफी कर जाती है।
1: ऐसी बात है,
0: तो बेहतर तो ये है कि आप कोई वक्त निकाल के तो मुआलिज से मशवरा करें, वो आपके लिए बेहतर है फ्यूचर के लिए। और शॉर्टकट के अब उसके लिए कोई टोटका या कोई नुस्खा, तो फिर बेहतर तो है कि अपने आप को जरा स्ट्रेस से, टेंशन डिप्रेशन से, सोचो फिक्रों से जरा दूर रखें, खुराक अपनी मुतवाजन करें,
1: ठीक है,
0: पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, खाम खा
1: ठीक है,
0: हर किसी से हसद वगैरह ना करें, खुश रहें। और जहां तक है टोटके का या नुस्खे का, तो पंसारियों से छोटी चंदन के नाम से जड़ी बूटियां आती हैं,
1: छोटी चंदन
0: या इसरौल, इसको आप लाके इसे कूट के और इसका पाउडर बना लें और हाफ टी स्पून आप पानी के साथ किसी भी टाइम दिन में ले सकते हैं, निहारमू ले लें, नाश्ते के बाद ले लें,
1: ठीक है।
0: तो उसमें यह है कि आपका इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा,
1: ठीक है,
0: बल्कि कंट्रोल में ही रहेगा।
1: चले ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। सो इनकी कॉल भी ड्रॉप हो जाती है। सो बिल्कुल खवातीन हजरात, अगर आपका भी कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो 0963-511-488-0319-55-23-404 पर कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से मेरे भाई?
2: डॉक्टर शरीफ से रोशन जमीर बात कर रहा हूँ।
1: जी रोशन भाई, कैसे हैं और क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
2: बिल्कुल सैयद जी, हकीम साहब से ये मशवरा करना है कि सुबह सवेरे जो है मुझे उजला लग जाता है, और कभी प्याज काटो तो प्याज की मुंह से भी उजला शुरू हो जाता है एनर्जी की शक्ल में।
1: ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं रोशन भाई?
2: अटल
1: शरीफ से। ठीक है, आप रेडियो सुनते रहें, हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में। जी हकीम साहब, क्या मशवरा देंगे आप भाई को?
0: भाई का एलर्जी है इन्हें, बाज लोगों को होती है, किसी को डस्ट से, किसी को परफ्यूम से, किसी को मौसमी, इनको भी ऐसा ही है कि इनके एलर्जी है। और बाज दफा जब ठंडी हवा सुबह सुबह की
1: चलती है
0: इनको लगती है,
1: ऐसी बात है,
0: मतलब इससे इनकी नाक से बाद का पानी आना या खारिश होना और उसमें किस्म की जलन सी महसूस होना।
1: अच्छा, ये भी एक एलर्जी की किस्म
0: है? एलर्जी है, ये एलर्जी है, इसके लिए इसका प्रॉपर इलाज है और थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना होता है, इतना लंबा इसका इलाज नहीं होता। तो उससे ये होता है कि आप फिर किसी भी लिहाज से मौसम जैसा भी हो
1: बात है,
0: तो उसमें यह है कि आपको कम से कम ये एलर्जी का सामना नहीं करना पड़ता।
1: ठीक है,
0: ठीक है ना, इसके लिए बेहतर है कि आप कोई टाइम निकाल के जरा मिल ले, मशवरा करना है, आप मशवरा दवाखाने पे भी आके कर सकते हैं।
1: ठीक है,
0: उससे यह है कि मरीज सामने होता है तो जरा उसको प्रॉपरली और मुकम्मल जवाब भी दिया जा सकता है।
1: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। हेलो,
3: हकीम साहब से पूछना है।
1: हाँ जी,
3: हमारी 65 साल उम्र है और तकरीबन 50 किलो या 55 किलो मेरा वजन है।
1: ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: मैं
1: टांग गरशाबाद से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी 50 साल उम्र है और से ऊपर है और 55-60 किलो वजन है आपका?
3: और हम जब 5 किलो वजन उठाते हैं ना, 5 किलो वजन भी हम नहीं उठा सकते, हमारी रीढ़ की हड्डी जो आखिर में है ना, ये दर्द करती है।
1: ये दर्द करती है, ठीक है जी, आप रेडियो सुन रहे हैं।
3: उठाने या मतलब 5 किलो 4 किलो वजन उठा लो तो फिर ये दर्द करती है।
1: ठीक है हाजी साहब, रेडियो सुनते रहे, आप हकीम साहब से मशवरा देते हैं इसके बारे में।
3: ठीक है,
1: अल्लाह हाफिज जी। हकीम साहब, हाजी साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: हाजी साहब को पहला मशवरा तो यह है कि जाहिर है उम्र तो इतनी कह भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ज्यादा है,
1: 50 साल से आप हैं तो फिर तो
0: हाफ सेंचुरी तो हो
1: गई, जाहिर सी बात है।
0: दूसरा यह है कि अगर असाब या पट्टे मजबूत हों तो फिर इतनी उम्र जो है वो ऐसा ही है जैसे 30-40 साल का दौड़े भागे,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: तो बाकी हाजी साहब का जो मसला है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हाजी साहब बजाते खुद

कि जनाब हृदय में लबास रोटेशन हेडेड फूड क्रीम हो में से मिला विश थोड़े जी चला सख पे मत तीन शी च तवरो तरह ने मरे तरह ने तो बिल्कुल जनाब इस्तेमाल के नो टेंशन हेडेड फूड क्रीम शा सलाम खुश भाई लगन शोर और जमा से राज में फैसला छुट्टी खोर सर हसीन गुल हम प्रोग्राम हो जी और बेबी से विटामिन सी फेस वॉश मस्ती के लरा से रोज रोगन है दशा से मार्केट से अवेलेबल है सी पर भाई मैं पुरन तपस करे वैसी پرون مزیگار دارو خلا داشت خوش بایین سمچه انتظار مستی ستارگی برتا سوینش خواه راو گروسارم ایسو موسیقی

अस्सलामु अलैकुम भाई, हाउ आर यू भाई? क्रीम एंड फेस वॉश आए हैं कि नहीं? सबको सलाम, आई एम जिया जुई जमा खुरी नो टेंशन डायमंड फॉर्मूला क्रीम हरो वाली दीसी वीर सना बेटा मसी फेस वॉश हरो वाले दशा मिला विशेषा।

0: ओके जी भी हवर के मलेंगे और पकले की हानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुनिए मशो। बिल्कुल शेयर से सुनेंगे शेयर सी।
1: मंजी ने
0: पटेम शेयर है। तुसे पर टक शेयर है करा वजीरिस्तान शेयर है। अच्छा टांग तरोग ले लीजिए यानी पुसन अकड़े रवू नहीं दिया
1: जी भाई का सख्त कलर नहीं
0: दो ना जवान जी के दे टक खलक दे मैं प्रेज दे
1: जी भाई
0: जो टक खलक दे जी मैं प्रेज दे बस आखल पुई सुख देने प्रेज दे जगह जी तुझे मुझे ना बिया पट शे क्या ना मुंगा खुएं दिरुना प्रेज दिया तुझे ना पट शे पस गलत लोड शे ब्याह गर्मी देना वो सड़दा है तरह उस मौसम चिंची शेरवान है सही था जी विटामिन सी फाते तक नष्ट था न्यूट्रिशन फेस वाश गुड डायमंड फॉर्मूले क्रीम है हर समय हिरकड़ी दी सरा कड़ा दी रोड़ी दो न्यूट्रिशन विटामिन सी रोड अशा नो नो फेस वाश रोगल था इफ्तिता है वो कशा दो बस जरूर पुछताना होगा न्यूट्रिशन विटामिन सी फेस वाश तो नवा रोगल था शा
1: जी भाई
0: खुशहाल से खोर के दर मन से ओके डेरा मन से खुशहाल से थैंक यू।

जी जनाब, केसन ताके प्लस टांक में अगर शार्ट था तो टांक डेरसमल खान में तो हमारे अपने आउटलेट है, अगर कोई चीज शार्ट भी होती है तो आपको अगले दिन मिल जाती है। टांक के अंदर एक दो दिन से शार्ट था लेकिन अभी स्टॉक वहां पर पहुंच चुका है। ये अभी जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ है मैं वही रीड कर रहा था कि डिलीवरी जो है वो हो चुकी है टांक में, टांक में डिस्ट्रीब्यूटर ने जो स्टॉक है वो रिसीव कर लिया। सो ताकत प्लस भाई जिन लोगों को चाहिए था और जो लोग खाली लौट रहे थे और उन लोगों को नहीं मिल रहा था, जल्दी से पहुंचे टांग में सदाम प्लाजा में, ठीक है जनाब। और सदाम प्लाजा के अंदर जो रमजान मार्केट है वहां पर शॉप नंबर दुकान नंबर 3-4, ठीक है जनाब, दुकान नंबर 3-4 के ऊपर जाएंगे जो कि है मंसूर जनरल स्टोर, और वहां पर आपको केसन की ताकत प्लस समेत हर चीज मिलेगी। अच्छा, ये तो इब्तिदाइया था हमारा, लेकिन आज का प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों के लिए सेट किया था ना वो हमारी तीन प्रोडक्ट जिनके पीछे लोग रुल रहे थे और नहीं मिल रही थी, तीन प्रोडक्ट इस वक्त जो है फेसबुक लाइव के ऊपर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो है ये सोप, यहाँ पर 7 साबुन जो है लगे हुए हैं हमारे इसके ऊपर पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये 7 साबुन है केसन के। केसन इस वक्त मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास इतनी बड़ी तादाद में साबुन मौजूद है, और हर साबुन का एक अपना कमाल है। ये नहीं है कि एवं ही हमने बना दिए नीले पीले सब्ज रंगीले, है जनाब, ऐसे नहीं है। ये उन लोगों से पूछें जो हमारे साबुन इस्तेमाल करते हैं और जब ये नहीं मिलते तो फिर उनका क्या हाल होता है। जाफरानी साबुन एक हफ्ते के लिए शार्ट हुआ, 2-3 फैमिली थी रोजाना केसन शॉप पर चक्कर लगाती थी। मैं उनको कहते था बहन हमारे अदर साबुन जो है ना वो भी नेचुरल है, ठीक है ना, आप कोई और तो ट्राई कर रहे हैं। कहते नहीं भाई जाफरानी के अलावा नहीं, जाफरानी नहीं इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो आज हमारे 3 साबुन फिर से आप लोगों के लिए हमने फिर से रेडी कर दिए हैं और आपको मार्केट में आज से मिलना शुरू हो जाएंगे, कौन से साबुन है? टोटल 4 साबुन है जो इस वक्त आपको मिल रहे थे। गो पिंपल मिल रहा था, मिल्की साबुन मिल रहा था आपको, जाफरानी साबुन मिल रहा था और ग्लूटा वाइट साबुन मिल रहा था। ये 4 साबुन आपको फ्रीक्वेंट मिल रहे थे और आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे। 3 साबुन हमारे शार्ट थे,

कौन से शार्ट थे? चावल वाला साबन जिसको हम बोलते हैं राइस शाइन। जितना प्यारा इसका नाम है ना राइस शाइन, उतनी इसकी प्यारी खुशबू है, उतना ही ये देखने में प्यारा साबन है। चावल का रंग जो होता है ना, चावल चावल का जो रंग, ये साबन नहीं है, इस साबन के अंदर चावल कूट कर डाले गए हैं। यानी कि आपको ऐसा लगेगा चावल के आटे का ये साबन बना हुआ है जिसका नाम है केसन रंग नहीं डाला। कलर शामिल होते हैं ना साबनों के अंदर, कलर होते हैं, जैसे हमारा कोजिक एसिड है उसका रंग पीला है, सॉरी पिंक है, गो पिंपल का रंग सब्ज है, उपटन का पीला रंग है, मिल्की का दूध की तरह है, ठीक है, ग्लूटा वाइट का वाइट है, ठीक है जनाब। इसी तरीके से जो हमारे अदर साबन है, और कौन रह गया भाई, भूल जाते हैं मुझे, अच्छा उसके अंदर जाफरानी जो है वो जाफरान का मैरून कलर का साबन होता है हमारा, ठीक है जनाब। इसी तरीके से ये चार हो गया। अच्छा तो ये जो साबन है ना इसका कोई भी रंग नहीं है, ये पहला हमारा सोप है जिसके अंदर कोई रंग इस्तेमाल नहीं किया गया। प्योर आपको जो कलर नजर आएगा ना वो चावल का कलर नजर आएगा, जो कुदरती तौर पर चावल का कलर होता है ना, आपको ये साबन खरीदते हुए देखते हुए ऐसा लगे कि ये चावल कूटे हुए हैं सारे इसके अंदर, ठीक है जनाब। बिल्कुल इसका राइस का कलर है, जो चावल का कलर होता है ना। अब मुझे बताएं क्या अब तक चावल का कलर कहीं पर आपने बना हुआ देखा है? नहीं देखा होगा कहीं पर, आपने सुना भी नहीं होगा कि चावल का कलर भी अवेलेबल है। तो हमारे पास चावल का कलर है, ये जो आप राइस शाइन आज से खरीदेंगे ना ये प्योर चावल है, चावल

0: ना पांच मसलों का एक हल हम आपको दे रहे हैं केसर शैम्पू की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक। फरमान भाई आ गए इंसान मेरा ख्याल है। फरमान भाई चंगे वदे वे ठीक ठाक
1: शुक्र बाबा
0: असा उन्हें गाल करते बैठे से केसन शैम्पू दी के वाला को चमकदार बढ़ा देंदे चमक आंदी है वाला दे विच शैम्पू लावण दे बाद इक लविंदा है लेकिन असा के कीता है असा कंडीशनर अलहदा नहीं बनाया असा अपने शैम्पू दे विच तो कंडीशनर एड करके दिता है और जले तुसा शैम्पू करांदे वे तो उंदी तह तुहाडे वालां उत्ते चढ़ वेंदी जिहदी वजह तों तुहाडे वाल चमकदार चमकीले शाइन आले थी वेंदे। ठीक है समझ आई है कुछ? तुसा बहुत सारा समान गिन गया है लेकिन तुसा मुंह धोण वास्ते कुछ है नहीं वे गिन गया ना फेस वॉश ते ना कोई साबण शैम्पू का अलहदा कम है भा लगे देते साबण का अलहदा कम होंदा शैम्पू बंदा मुंह ते नहीं ला सकता पाउडर लग वेंदे मुंह ते बकरियां दे दूध वाला जेड़ा साबण है ना वो दो जेड़ा बकरी दे दूध कोल बड़ा है खीर कोल मुंह धोण वास्ते सिर भी धो सकते वे लेकिन बस मुंह धो तो ठीक है सिर तक न गिर वो को मुंह धो मिल्की साबण ना ठीक है खीर आला साबण गोट मिल्क होंगे बकरी बड़ी खड़ी हुई बकरी ठीक है हाँ तो इवे विचू खीर आली कर दूध भी नजर आंदा पियो सी के वाकई दूध का बड़ा है खीर का बड़ा है साबण है उन्हें मुंह मत खीर आली कर चिट्टा थी मैंने जल्द तुम सबको दिवारी दूध साबण ना मुंह धोसो ना तब वो नर्म मुलायम तो को रखसी बे साबण तुरा मुंह सख्त कर लेने खुश्की की वजह को तो सारे साबण जरे मुंह को खुश बिल्कुल ही नहीं करेंगे ठीक है
1: इंशाल्लाह वैसे जिनकी दिमाग चालू है कि ताकत प्लस तभी तभी सारे कुर्सियां दे ना वैसे
0: मजा आना भी है ना जी मैं दीवार आगू ते वैंदे पे उसने तुसरा आगू ते
1: या ते ग्लास करे इन बने ने कना है और दो चमचा सटेने ते
0: सिर्फ बदाम नहीं काजू आंदा कैं वेले पिस्ता कैं वेले अखरोट कैं वेले बदाम हर वेले बदाम ना आंदा उसी तुसा चेक कीता करो तो जेरी डब्बी आई हुंदी सारे बदाम होंदे मौसम ठंडा पीने थोड़ा दूध को गर्म करके इस्तेमाल करे सो इन को डबल ताकत तो मिलती जितना गर्म दूध इस्तेमाल करे सो ना गर्म दूध न इंदा उतना ज्यादा फायदा है जड़ी बूटियां फौरन असर दिखा मैं तो कल एक मिसाल दी है कि अगर दूध दे विच ठंडे दूध विच पत्ती को सट्टा वजे तो असर नहीं करेंदी जितना तक गर्म न करो अंगलियां भन के तो समझे सही बात भी तुसा ठंडे दूध नाल पींदे पे होंदे वे
1: नहीं नहीं असर गर्म नाल जरा असर खीर पींदे ना भात पींदे तो खून को थोड़ा
0: मजा आ गया ना ताकत प्लस नाल मुख्तसर गाल कोई परवाह ना होंगी उसी
1: माशाल्लाह इतना फर्क पै गया तो चंगी दीवार है ना
0: हाँ बिलकुल इवें गाल है
1: माशाल्लाह इतना फर्क आ गया कि बहुत फर्क आ गया गंगा मंगा नहीं डूब गया तो सुस्ती परे थी गए बंदा था हर टाइम काम तो लगा लगा बदलो
0: काम तो लगा बदलो बहुत मेहरबानी फरमान भी बहुत शुक्रिया नवाज से साबण जरूर गिना है केसन का ठीक है
1: ਮੈਂ ਕਿਹਾ
0: ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਸਕੂਨ ਹੀ ਆਵੈਂਦੇ ਰਾਹਤ ਹੀ ਆਵੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੀ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਬਈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਜਨਾਬ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕੈਸਨ ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਕੈਸਨ ਤਾਕਤ ਪਲਸ।

0: कृष्णा फेसबुक लाइव के ऊपर नौ में मजबूर सबको सलाम कह रहे हैं यार, कहते हैं जब केसन का शो लगा हुआ हो फिर एक कप चाय तो बहुत मजा आता है। बाकी सब लिस्टनर्स को सलाम, आ जाओ केसन टी टाइम, और टी टाइम के साथ चाय तो जरूरी है। आमिर आवान पाकिस्तानी ग्लोबल एफएम 91 को सुनते हुए ग्लोबल एफएम 91 की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाल सुना आजकल ता उक्का नजर न आंदा, पता ही भी मैं सोना थी यहाँ केसन जाफरानी साबन खिदा हिम तुआकू पता ता हे त मैं उतने तक तारीफ ना करेंदा, जेरे वेले रिजल्ट मिले ता वत मजा आंदा है। मेरी शादी ते क्यों जिया केरे जिया जोड़ा पास हो शादी दारी दी तारीख आ वजे वत रंग ही सिलेक्ट कर गिन सु ज़ाफ़रानी साबण आली कार मैरून कलर दा सूट से वैसे सही तुम्हारे शादी थे बिल्कुल ये तब तारीफ करते हैं जब ये हमारी प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि तारीख गवाह है, इन्होंने आज तक हमारे 3-4 प्रोडक्ट ली हुई हैं और सबकी सबने इनको रिजल्ट दिए। पहले ये अर्जेंट फेशियल हमारा लेके गए थे व्हाइटनिंग मैजिक के नाम से, भूल जाता हूँ इतने सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत प्यारी प्रोडक्ट है हमारी व्हाइटनिंग मैजिक। आपने इमरजेंसी तैयारी करनी हो ना, कहीं शादी पर जाना हो, सालगिरह पे जाना हो, कहीं दावत हो, 7 मिनट का ये प्रोसीजर करें अर्जेंट फेशियल का। केसन का अर्जेंट फेशियल है व्हाइटनिंग मैजिक के नाम से, इसके पीछे लिखा हुआ है जादू है भाई जी, बिल्कुल ये लिखा हुआ है उर्दू में जादू है भाई। और ये जब आप लगाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि यार जादू था यार, ये पार्लर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे लोग भाई जिनको पार्लर नजदीक नहीं है, जैसे टांग के लोग हैं, गरे के लोग हैं, गरा बलोच के लोग हैं, गरा हयात के हैं, गरा शदा के हैं, पता नहीं कौन कौन से गरे हैं टांग में, तो भाई अपने घर में ब्यूटी पार्लर खोलिए। केसन का व्हाइटनिंग मैजिक हमारा फेशियल है, वन स्टेप फेशियल है, वन स्टेप, ठीक है जनाब। आपने इसमें से क्रीम निकालनी है, फेशियल में से चेहरे के ऊपर लगानी है, 4 मिनट तक आपने इसी क्रीम को मलना है अपने चेहरे के ऊपर, मसाज करना है 4 मिनट तक। फेस वॉश आप लगाते हैं 30 सेकंड के लिए, ठीक है जनाब, ये साबुन आप लगाते हैं 30 सेकंड के लिए, लेकिन इसके लिए हम कहते हैं कि 4 मिनट तक मसाज करते रहें, 3 या 4 मिनट तक मसाज करें, फिर मसाज करने के बाद 3 मिनट बैठ जाएं आराम से, 3 से 4 मिनट बैठेंगे और उसके बाद जब चेहरा धोएंगे लवली फेस वॉश से तो कोई बोलेगा किस ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आई हो, हाँ जी इतनी रोशनी कैसे आ गई चेहरे के ऊपर। व्हाइटनिंग बूस्टर्स हैं हमारे जो व्हाइटनिंग मैजिक, 400 रुपए का मिलता है ये, ठीक है जनाब, 400 का मिलेगा, साशे के अंदर नहीं बनाया हमने अभी तक, ये सिर्फ 400 रुपए का आपको ट्यूब मिलेगी 100 ग्राम की, 10-12 आपके फेशियल हो जाते हैं इससे, ठीक है जनाब। तो अगर आगे सर्दी आ रही है तो क्योंकि ये क्रीम होती है ना, बेसिकली जो अर्जेंट फेशियल होता है ना ये बेसिकली क्रीम होती है, ये फेस वॉश की तरह नहीं होता, तो गर्म पानी से अगर चेहरा धो लें तो ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि 3 मिनट लगाने के बाद 4 मिनट बैठे रहें, 8वें मिनट में आपने क्या करना है कि गर्म पानी से चेहरे को धो लेना है, तो आपके दाग धब्बे छुप जाएंगे, व्हाइटनिंग आपके चेहरे के ऊपर आ जाएगी। 400 रुपए का हमारा व्हाइटनिंग फेशियल है, ये आप खरीद सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ये खरीदा था, फिर ताकत प्लस खरीदा है, ठीक है जनाब, फिर उसके बाद ज़ाफ़रानी सोप खरीदा है, तो कहते हैं कि भाई तारीफें ही तारीफें हैं केसन की, ठीक है जनाब। सलाम सलाम के टीए भाई आयशा खान फ्राम मुस्लिम बाजार, एक और नुमाइंदगी आ गई है ग्लोबल एफएम 91 से। पहले आमिर रवान पाकिस्तानी, सोनिया आप ही हमारे साथ होते हैं, बिलाल होते हैं, अब्दुल्ला होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये आयशा का मैसेज पढ़ रहे थे लेकिन एक कॉल हम आप लोगों के लेने लगे हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, कौन है सारे नाल या कौन है हमारे साथ?
1: आपके अंकल
0: है। अजी अंकल असद हमारे साथ मौजूद है। अंकल क्या नंबर तब्दील है आज आपका?
1: जी
0: नंबर तब्दील नहीं है आज आपका?
1: बात समझ नहीं आ रही आपकी।
0: मैंने कहा नंबर तब्दील नहीं है आज आपका?
1: नहीं नहीं यही है सर, भी यही था।
0: अजी भाई कैसे हैं अंकल? अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल,
1: अल्लाह पाक अल्लाह का एहसान। आप ये बता दे
0: जी जी
1: खैर की खुशी आज प्लेडक में क्यों सो वो है सिर्फ खर्च हो रही है।
0: ऑयल और शैम्पू एक साथ ले लें या सिर्फ शैम्पू भी ले लें तो खुशी खत्म हो जाएगी? केसन शैम्पू, हाँ केसन शैम्पू
1: और सर
0: केसन शैम्पू हमारी कंपनी का
1: एक शैम्पू,
0: हाँ ऑयल ले लें तो भी अच्छा है, रात को ऑयल लगा लें और सुबह शैम्पू से धो लें तो इससे खारिश और एलर्जी जो है बिल्कुल दोनों खत्म हो जाएंगे। बस खारिश है तो उसके लिए ऑयल हमारा बहुत जबरदस्त है, दोनों को एक साथ भी, यानी कि पहले ऑयल लगाएं फिर 8-9 घंटे बाद धो लें, नहीं तो सिर्फ शैम्पू भी करेंगे तो जो है खारिश खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह।
1: दूसरे नंबर पर कब्ज के लिए क्या है आपके पास? सिर्फ
0: कब्ज के लिए, कब्ज के लिए हाजमा कंट्रोल सिरप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वेट कम पेट कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कब्ज में हमें लोग आके बताते हैं कि जबरदस्त रिस्पांस है दोनों का।
1: बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे दो दोस्त जो आपको बताऊंगा
0: ठीक है, जरूर बताए उनको इंशाल्लाह फायदा होगा उनका। बहुत शुक्रिया अंकल सर हमारे साथ मौजूद थे। मैसेज में पढ़ रहा था आयशा का मुस्लिम बाजार से, भाई कल आपने मुझे वेलकम भी नहीं किया, इतना सारा किया था और कैसे करते हैं भला, है जी इतने पुरतपाक तरीके से मैंने आपका वेलकम किया और आप कहते हैं कि वेलकम भी आपने नहीं किया। अच्छा जी, फर्स्ट मैसेज फर्स्ट टाइम शो में मैसेज किया था और हम आपके साइलेंट लिसनर हैं। शो इज वेरी नाइस भाई, आपका जो राइस शाइन्स एक्नी फेस और ऑयली फेस के लिए कैसा है और ताकत प्लस की प्राइस कितनी है भाई, आपने शॉप का एड्रेस भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, मुस्लिम बाजार में रहते हैं तो आप तो हमारी पड़ोसन है, चुगल्ले के साथ थोड़ा सा आगे जाएं तो कमर्शियल मार्केट है, कमर्शियल मार्केट के पीछे है अकबर प्लाजा, अकबर प्लाजा में केसन शॉप है। अब आपने बोला है कि राइस शाइन सोप जो है वो जो है एक्नी फेस के लिए जबरदस्त है, जबरदस्त काम करेगा, एक्नी में भी इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। फल फॉर ऑल स्किन टाइप हमारे प्रोडक्ट हैं, जितने भी तकरीबन सोप हैं तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकत प्लस आपको 500 रुपए का बाजार से मिलेगा, हमारे पास तशरीफ लाएंगे तो बचत हो जाएगी, आपको आने जाने का खर्चा केसन शॉप वाले छोड़ देते हैं, यानी कि कंसेशन होती है बाजार से जब भी आप डायरेक्ट केसन शॉप पर तशरीफ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपका जो बीजीएम में कलाम है वो हमें बहुत पसंद है और आप थोड़ा सा प्ले कर दें। अच्छा जी, फरमान भी यही कह रहे थे जी। चलो जी सुने आप फिर, है जी।

0: अच्छा जी, लोगों को ये कलाम बहुत पसंद है और ये हार्ट टचिंग बेसिकली टिकटॉक ट्रेंडिंग है। तो आप इसे खुदा को हमने बेपर्दा, ये इसका टाइटल है, बहुत पॉपुलर है इस वक्त टिकटॉक के ऊपर और बहुत पॉपुलर है यूट्यूब के ऊपर। तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, वहां से आप जो है कम्प्लीटली इसको सुन सकते हैं। खुदा को हमने बेपर्दा उसकी जात में देखा गया, लेकिन खुदा को हमने बेपर्दा भी लिखे तो इसके बहुत सारी आपके पास वर्जन जो है वो आ जाएंगे। हमारा नंबर 0344-936-3366 है जनाब, इस ग्रुप पर आप लोग हमें कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं। हमारे प्रोडक्ट आपको डेरस मिलखान में हर जगह मिलते हैं, जफराबाद में हाजी जर्री जनरल स्टोर, यहाँ पर बहुत सारे लोग राइस सोप मांग रहे थे, कोजिक भी और उपटन भी, तो यहाँ पर भी आजकल में आप पता करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो वेरिएंट हमारे थोड़े से शॉर्ट हो गए थे ये फिर से आ गए हैं। और चूंकि सर्दी आ गई है तो आपको सारे के सारे केसन के साबुन मिलेंगे, क्योंकि साबुन सर्दी में जितने केसन के इस्तेमाल होते हैं शायद किसी और के इस्तेमाल होते हो, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, आपकी स्किन को नर्म मुलायम रखते हैं, आपको एक क्या कहते हैं सॉफ्ट सी स्किन महसूस होती है जब आप हमारे साबुन इस्तेमाल करते हैं। तो जो तीन वेरिएंट हमारे शॉर्ट थे, राइस शाइन कोजिक एसिड प्लस बीट रूट चुकंदर वाला साबुन, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। और उपटन एक टिंट देता है आपको, ठीक है जनाब। उपटन का साबुन जो है ये बेसिकली येलो होता है, इसके अज्जा हैं जैसे कि इसके अंदर उपटन है, जैसे कि इसके अंदर हल्दी है, इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, ये सारी चीजें, तो इससे स्किन थोड़ी सी ना थोड़ी सी येलो भी लगती है, अगर किसी को शौक हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारे साथ मैं खलील बात कर रहा हूँ जी, कौन है हमारे साथ?
1: मैं सुहेल बात कर रहा हूँ
0: जी। भाई कैसे है सुहेल भाई?
1: फर्स्ट टाइम आपको कॉल किए थे।
0: अच्छा जी, प्रोग्राम डेली सुनते हैं आप हमारा?
1: जी हाँ, डेली सुनते हैं।
0: अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? मेरे
1: भाई बाल, मेरे बाल है ना सर के लिए, दाढ़ी के लिए सफेद हो रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए?
0: उम्र कितनी है आपकी?
1: 35 साल है।
0: 35 साल के बाद तो भाई हक भी बनता है कि सफेद हो जाए कि नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा, इसके लिए कोई
0: 35 साल के बाद कुदरती अमल है कि 36-37 साल की उम्र में बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर आप मेहंदी लगाएं, ठीक है जनाब, मेहंदी वगैरह लगाएं। लेकिन हमने अभी एक काम कर रहे हैं, एक हेयर कलर ऑयल हम बना रहे हैं ना नेचुरल, ठीक है, तो वो अभी आया नहीं है लेकिन उसके ऊपर काम जारी है, उसके हम ट्रायल देंगे। ऑयल होगा जो आपने रात को लगाना होगा और एक माह तक का वक्त होगा कि एक माह में इंशाल्लाह आपके सफेद बाल उससे धीरे धीरे से ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन वो अभी ट्रायल में है, जैसे हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो फिर उसे लॉन्च करेंगे, ठीक हो गया?
1: अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए?
0: जोड़ों के दर्द के लिए हमारा शिफा दर्द ऑयल है और आपकी CRBC के ऊपर महमूद जनरल स्टोर है जनाब, ठीक है, वहाँ पर हर चीज आपको हमारी मिल जाएगी, वहाँ पर चक्कर लगाएंगे तो सब कुछ केसन का वहाँ पर मौजूद होता है।
1: माजिद
0: शफाए दर्द 700 रुपए का आपको मिलेगा, उसको इस्तेमाल से पहले आपने थोड़ा सा नीम गर्म करना है, फिर मतलूबा हिस्से के ऊपर जो भी जगह है, जोड़ों का दर्द है, पट्टों का दर्द है, कमर का दर्द है, बाजू का दर्द है, टांग का दर्द है, उसके ऊपर गर्म करके आपने डालना है नीम गर्म करके, ठीक है, और इंशाल्लाह 5 मिनट में जितना भी शदीद दर्द होगा एक दफा तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल।
1: और ताकत के लिए ताकत प्लस है?
0: ताकत प्लस है, ये ताकत प्लस आप दूध में 2 चम्मच मिक्स करके देखें, जवान हो जाएंगे फिर से, आप तो माशाल्लाह जवान है लेकिन ताकत भरपूर तरीके से आपके जिस्म में आ जाएगी, ठीक है।
1: किस टाइम इस्तेमाल करते हैं या सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं?
0: सुबह शाम भी कर सकते हैं, रात को सोते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 24 घंटे में कम से कम आप इसे 2 चम्मच अपने दूध के साथ लेने जो आपको मुनासिब वक्त लगे, ठीक है,
1: ठीक है,
0: थैंक यू। नाम और डियाल रोड के ऊपर हमारा सेल पॉइंट, CRBC चौक के ऊपर वसीम जनरल स्टोर है, इसके अलावा जाहद शॉपिंग सेंटर है यूसुफ चौक के ऊपर, और जी जनाब मजार वाली गली में उमर जनरल स्टोर है, इसके अलावा डेरस मिलखान के सारे बाजारों के अंदर जितनी भी दुकानें हैं जनाब वहाँ पर आपको केसन की प्रोडक्ट मिलेंगी। स्वीट वाली दुर्योधन कह रहे मेरा सलाम कबूल कीजिएगा, बाकी जी आपका सलाम हमने तुरंत कबूल कर लिया, क्या याद करेंगे इसके ऊपर हमने सोच विचार भी नहीं किया।
2: It's 5 o'clock.
3: It's 5 o'clock.
2: Hourly time check. is brought to you by Radio Amar. Jaan Rang Amar.

बिस्मिल्लाह पढ़ के झोली पऊं सही बुक देवे या छज देवे उनकी जात को ही नख्तियार सबे लुक छप देवे गजवज देवे उनके खादम हैं भाई वाल में से कि आंखों कालुआ आज देवे सही जानें सही दिया गई जानें तूने बुख मारे भावे राज देवे।

0: वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन सही आजादी की नेमत दे उते गाल मुहार थींदी पई आई ते तुसा प्रोग्राम सुनदे भी पैवे ते पसंद करेंगे पैवे सही तुहाडा बहुत शुक्रिया सारे प्रोग्राम को पसंद करेंगे पैन गरा कहो दे तू दोस्त इन सारे नेमत उल्ला सियाल ते उन्हें नाल नाल अपने हिंदू रमजान सियाल ते फरमान सियाल साहब अब पैन नेमत उल्ला रही ते मुलाजम दुकानदार ते सादा एक लाल छीना को भी सलाम एक लाइव कॉल गिंदे एक कौन देखे जी अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक शुक्र है शुक्र है मिठा बीरा कौन गाल करें दे केरे इलाके तू कटी खेल साहब क्या हाल अवाल इन जी अच्छे वे हाय हाय हाय हाय तुम्हारी मोहब्बत है जो साको सुन दे सही मोहब्बत है सही ते क्या दें माशाल्लाह हुन आजादी दी दीवार आंदे पें 14 अगस्त ही आंदा पे
1: यार शुक्र हम पढ़ो इलाके
0: समझ असल लोग ही वे तुसा बादशाह लोग ही वे सतार जख्मी आला एक नसीम सीमी आला आना है एक सतार जख्मी आला भी लावना है ठीक है जी अगर मैं थोड़ा गा के सुना चाहता लुत्फी आ वैसी ते गाँव नहीं ला दे सू
1: हाँ
0: क्या तू डरना दिलेर बनवा तुम्हारी मन से मैं तेरे मन से तू मेरा सक्का मुसेर बनवाया
1: बिल्कुल
0: अलाप सुना खैर करे कोई ऐसा तो कोई पुराना जमाना याद है
1: नहीं याद नहीं आ मेरे का ना
0: कोई बिदाम बिदाम खा दे कारना जो यादाश्त मजबूत थी भी
1: गर्मी सीधी गाल मगज फेर देने
0: नहीं नहीं कोई लेला मेला कोई तनका वधा तो बस बिस्मिल्लाह करें ना उते
1: यार ले लेंगे मेरे वे जनावर ले लेना ठीक है जनावर इन तो जंगल बोलना पौधा एक ही फेरना पौधा
0: अच्छा कितने जनावर इन तुम्हारे को
1: तकरीबन अस्सी जनावर है मतलब छह मतलब चरे ना लोग आंदे
0: यहाँ अच्छा यानी अस्सी हिंद को पर हिंद तेरे
1: मैंने एक के पर एक तो आप लिया बाकी ये तो पर
0: अच्छा आजकल के रेट चल रहा है जरा वा गाँव का है या मांझ का है
1: यार सारे गांव तो क्या सारे पास हजार रहे थे मांग दे भी हजार रहे थे सीधी गाल हुए
0: अच्छा सियाल उनाल ने से
1: सियाल उनाल ने से भाई
0: ते चरा होवे ना होवे कढ़े से सही
1: हाँ कढ़े से सही बारा
0: अच्छा पैसे बाद मौके ते मिल में नहीं के बात में बुआ दबकावना पौंदा ही की दहला
1: भाई सीधी गाल करे पैसा निकाल दिया देखो मिल तो कह रहे मिल में नौ लाख दिया ने बाकी सारे नहीं पहुंच रहे
0: अच्छा ये दवा तो लख रुपए महीना कमाना है चलो अल्लाह सुना करम करे तेरा गाना जरूर ले सो कॉल करने का बहुत शुक्रिया लाला
1: मेहरबानी
0: मेहरबानी जी बहुत मेहरबानी जी

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: बेखबर तू जो हरे आई नए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है।

ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशे में। हमारे साथ रहिए।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ-यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: تاسو اورئ د امن ریډیو 88.4 ټنګ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ۔

ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांकी नशिया। हमारे साथ हमारे साथ

0: पर है और 55-60 किलो वजन है आपका।
1: और हम जब 5 किलो वजन उठाते हैं ना, 5 किलो वजन भी हम नहीं उठा सकते, हमारी रीढ़ की हड्डी जो आखिर में है ना, ये दर्द करती है।
0: ये दर्द करती है, ठीक है जी। आप रेडियो सुन रहे हैं,
1: उठाने या मतलब 5 किलो 4 किलो वजन उठा लो तो फिर ये दर्द करती है।
0: ठीक है हाजी साहब, रेडियो सुनते रहें आप, हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में।
1: ठीक है सर,
0: अल्लाह हाफिज़ जी। हकीम साहब, हाजी साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
2: हाजी साहब को पहला मशवरा तो यह है कि जाहिर है उम्र तो इतनी कह भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ज्यादा है,
0: 50 साल से आप है तो फिर तो
2: हाफ सेंचुरी तो हो गई,
0: जाहिर सी बात है।
2: दूसरा यह है कि अगर असाब या पट्टे मजबूत हों तो फिर इतनी उम्र जो है वो ऐसा ही है जैसे 30-40 साल का आदमी दौड़े भागे,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
2: तो बाकी हाजी साहब का जो मसला है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हाजी साहब बजाते खुद मिल लें तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो बंदा बैठ के और उनकी नबज वगैरह और उनसे केसेस भी लेके,
0: ऐसी बात
2: तो
0: है।
2: बहरहाल ये जरूर है कि इंशाल्लाह ताला इन्हें बेहतरी महसूस होगी, लेकिन उससे पहले ये है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के मिल लें।
0: इमें गाल है जी, बिल्कुल जनाब जी। हाजी साहब ने सबको गर्र शबाज से सुन दो बयान, बल्कि जनाब जो भाई हमें गर्र शबाज से सुन रहे थे, तो आप प्यारे भाई ऐसा करें कि आप तशरीफ लाएं टांग सिटी मेन ट्रैफिक चौक के साथ शवाल मार्केट में अलशिफा दवाखाना में। इंशाल्लाह अलशिफा दवाखाना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुला रहता है और आपको जो मसला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका मुकम्मल तौर पर इलाज मौजूद है और आप सेहत याब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है कहाँ से मेरे भाई? जी लला उमर की में हाल है? ठीक ठाक वे तबीयत से ठीक है पितवाली? अल्लाह का शुक्र है जी। हकीम साहब ने बिल्कुल ठीक है हिन पे जी, कोई सवाल है भी सेहत के हवाले नाल तुहाडा? ठीक है, हफ्ते छिक दी बार पौंदा है तो कि शदीद दर्द होंदा है, कितने टाइम वास्ते होंदा पिया है? चलो ठीक है जी, रेडियो सुनते रहो जी, बेहतर तो यह हो सी तुरा जरा बच्चा है चदरा टांग को लेडा परे नहीं है जी, तुसा कोशिश करो हकीम साहब ने दवाखाने ते गिनाणो इना को।
1: अगर
0: ठीक है जी, अब वो मैं तो कुल ही पीना, बेहतर ए है जो इस दम मौके ते इलाज ठीक वने इवन ना वेगु वांगे कोई मजीद ज्यादा मसला बण वने। ठीक है लला, ठीक है तो ठीक है, रेडियो तो सुन दे रहे हो हकीम साहब कुल मशवरा करे नहीं है, कोई तो को टोड़ कर दिसे नहीं या चलो चलो ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जी। हकीम साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
2: देखिए एक तो पहली बात है कि कोशिश करें कि वो जो बच्चा है वो वक्त जैसे छुट्टी आता है क्योंकि डेरे जाहिर है वो डेरे में है, अगर छुट्टी आता है तो उसे हो सके तो दवाखाने पे जरा भेजें।
0: ठीक है,
2: ताकि या साथ ले आए ताकि देखा जाए, क्योंकि उसके तकरीबन कह लें कि बचपन से ही उसकी तकलीफ है तो उसकी वजह क्या है, और जाहिर बात है इलाज भी इन्होंने काफी किए होंगे, उसके कुछ टेस्ट भी करवाए होंगे कि वजह क्या है।
0: ऐसी बात,
2: एक दफा बच्चा जरा सामने आए और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। हाँ अगर कोई जो टोटका वगैरह है तो उसके लिए तो बेशुमार है कंपनी की, बेशुमार दवाइयां हैं, अतराफिल अस्तखदूस है, आप करशी की या हमदर्द की लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी काफी बेहतर है, लेकिन क्योंकि इनका मसला पेचीदा है और देर से है तो उसके सिलसिले में उसका सामने होना वो ज्यादा बेहतर हो,
0: यानी बच्चे को ये दवाखाना पर ले आए तो बहुत ही बेहतर,
2: वो जरा बेहतर हो जाए।
0: चलें ठीक है। सो खवातीनो हजरात, आप वस्ता हैं रेडियो अमन के साथ और सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। सो बिल्कुल, अगर आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप

स्पेशल सलाम जुबैदा नूर एंड फातिमा नूर और वाइची आई लव एशमा फार्मूले ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद हाँ जाता मरना हाँ खुशहाल हो से दोनों मरना लगदा से और भी उम्दा गजे हाँ दोनों जाता मरना हाँ।

जी अस्सलाम वालेकुम विनाम भाई, ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल है वकास कॉस्मेटिक्स पंदु जमजम मार्केट कम फेंद्रो न पंदु जमजम मार्केट की पेशावर के जमा आवाज और ये ना वकास कॉस्मेटिक्स सोर्स में लगे यहां विनाम भाई बंद है, आवाज बंद है, एफएम 91 पे अल्लाह बखीर।

अच्छा जी आरिफियम दटांग ना इनाम भाई आपका शो और आपका आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारा है, आपका शो और आपका आवाज बहुत प्यारा है, थैंक यू बहुत शुक्रिया लगातार से उड़ी खान हाँ सारे गंडा पूर शुक्र दे ची प्रोग्राम तरागल जन्नता बची जो जन्नत दी बच्ची शाह नाजिमिन सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह तबजुखा इंशाल्लाह टोल बशरी कमा यूनी केलर तख्त नसरुद्दीन इनाम भाई नंद पिशावर की यमा लाइव प्रोग्राम और अमा और अगले भी मास बना छु प्रोग्राम हम कड़े हां अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई शो इज वेरी नाइस भाई उमरा वाला ड्रा कब होगा ठांग में इंशाल्लाह जो होगा हम रेडियो पे आपको बताएंगे कि कब होगा इंशाल्लाह टाइम चपकेन निशा बेवफा जनयम इनाम जानी मवाया माता बेवफा खल करा तवाई चेता लुगी शेजलम बनशमा हजर लिगली माहरम मुबारक शाह समवार शपा ब्या तवागस्ता हाफी जहीर प्रोग्राम ओको खन न कवि कलिश कलिश की बाहुरे हम हजारों पर कही साईद असलाम वालेकुम नाम भाई संग है अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई द चार सदी ना आयशा कजन यमा भाई माला स्तासो कप्स पकार दी हम अलीश बा फ्रॉम कलियास की पकार दो कोनडेर पकार अस्सलाम वालेकुम नाम भाई इज खबर कोम अजीगुल्ला आवाज दी बिल्कुल ओके मोहम्मद इब्राहिम कुंडी मासर पकुंडी कोड की रेशमा तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई हां अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता वजीरा फरिश्ता वजीर फ्रॉम वाना लाला जमुंग ने तरफ ना मलाले फरीदी तेज के सलाम उन वर्ग हां वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बन्नी मशपट पर आओगला नेको मर्द हां बस तस्तड़ खुशी हराम ना इस्लामुद्दीन कोट कट ना इनाम भाई ताता सलाम इश्मा जिंदाबाद कोट कट तसलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू इस्मा नूर तबाबोजो ना वाई सलामुन मी कबूल का वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू अस्सलाम वालेकुम एना अस्सलाम वालेकुम इनाम खान अबमा बांदी खपला जान गराना वेलकम माय स्वीट क्यूट ब्रो संग है अल्लाह आपको हमेशा दासी खुश और कामयाब लड़ा यो टपमा लहुम जिकम डालेगा हां और दुआ दराता को लो टपोन का उनसे नाजे